हेलो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज पर हूँ छू आरजे एआर। ईश्वरे बनावेला बढ़ा जीवों माथी फक्त मानवी एकलोज पैसा कमाए छे, पण बीजो एक पण जीव भूख्यो रहतो नथी अने मानवी क्यारे धरातो नथी। मित्रों, आ विचार एटला माटे उत्तम छे कारण के आपणे सौ पेटियो रळवा माटे कमाईए छीए अने ए धन कमावा माटे आपणे बधा ज नियमोने नेवे मूकीए छीए, पण ए विचार आपणे करता ज नथी कि आपणा सिवायना आ धराना अन्य जीवो पण जीववा माटे पेटमां कंईक ने कंईक नाखे छे अने ए माटे एमने कमावू जरूरी नथी। आपणे माणस छीए, सुख साहेबी जे દુન્યવી છે એના માટે કમાઈએ છીએ અને એ વાત સાહજિક છે કે કમાવવું પડે, કર્મ કરવું પડે, પણ કર્મમાં ક્યારે સિદ્ધાંતોને વે ન મૂકવા જોઈએ। મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો અને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર 90.4 મેગાહર્ટ્ઝ।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

पक्का पालन पूरी नहीं होगा कितने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजी दिलवर। सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 पर। श्रोताओं, मैं हर एपिसोड में आपको कुछ ऐसी दिल के रिश्तों की कहानियां सुनाता हूं जिसमें हमें अपनी जिंदगानी में वैसे ही माहौल में कैसे और किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहिए वो एक छोटी सी सीख मिलती है। और प्यार की बातें, प्यार की कहानियां हम साझा ही इसलिए करते हैं कि इन कहानियों की वजह से हमारे जीवन में भी प्यार बना रहे। और यही प्यार है जो आपको जिंदगी के साथ एक लगाव, एक जुड़ाव देता है। और उसकी वजह से आप अपनी जिंदगानी में ऐसे मोड़ पर जहां पर आप अपने आप को अकेले महसूस करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी में प्यार बिल्कुल ही नहीं है, तब ये कहानियां आपने अगर सुनी होगी तो आप सोचेंगे नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। प्यार करने वाली चीज है, यानी कि प्यार हमारी ओर से होता है। प्यार का दूसरा छोर होता ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि प्यार का कोई अंत होता है या फिर दूसरा छोर होता है या फिर उसमें एक्सपेक्टेशन होती है, तो आप प्यार को समझ ही नहीं पाए। वैसे मैं आपको गलत नहीं ठहराना चाहता, पर आज मैं कुछ किस्से और कहानियां ऐसे ही सुनाने वाला हूं जहां प्यार एक तरफा है ऐसा लोग मानते हैं, पर मैं और प्यार करने वाले ये कहते हैं कि सच्चा प्यार यही है। चलिए इस छोटे से विराम के बाद हम इस कहानियों के छोटे छोटे अंशों को सुनेंगे। कहीं जाइएगा मत, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

वेलकम बैक 90.4 मेगाहर्ट्ज पर सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 पर। एक ऐसी लड़की की कहानी है, छोटी सी ये कहानियां है, पर आप सोचेंगे कि रिश्तों में प्यार देना और प्यार पाना ये हरगिज किसी के लिए प्यार खत्म हो जाने वाली बात पर नहीं दिखता है। एक ऐसी लड़की जो अपने भैया को इतना बेइंतहा प्यार करती थी, उससे 2 साल छोटा था, उसके मम्मी पापा थे, पर वो ऑब्वियसली पैसे कमाने में मुंबई जैसे मेगा सिटी में इतने बिजी थे कि उसने अपने भाई को अपने बच्चे की तरह बहुत प्यार से, नाजो से पालकर उसे बड़ा किया था। उसका भाई भी उसे दीदी माँ कहकर बुलाता था। उसे भी यही लगता था कि माँ और पा हो ना हो, मेरे जीवन में मेरी दीदी होनी चाहिए। ये लड़की जब 20-22 साल की हुई तब उसकी शादी के रिश्तों को नकारती रही, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारा मेरा प्यार बढ़ जाएगा और ये मेरा भाई जो आज भी अपने आप को अपने मम्मी पापा से इतना नज़दीक नहीं पा रहा वो क्या करेगा, क्योंकि उस वक्त उसकी पढ़ाई के, कॉलेज के, करियर के साल चल रहे थे। 6-7 साल तक वो अपने भाई से लगे इतने प्यार के रिश्तों को निभाने के लिए वो शादी नहीं कर।

उसका भाई फॉरेन चला जाता है कुछ पैसे कमाने, कुछ अपनी लाइफ को बनाने के लिए। तब वही उसका सपोर्ट करती है, वही उसे कहती है कि तुम अपने आप को, अपनी लाइफ को ऐसे बनाओ कि किसी और पर निर्भर ना होना पड़े। और प्यार की दुआएं तभी भी वही रहती है। हर महीने उसकी चीजों को, जो इंडियन चीजें हैं, उसे पैसे खर्च कर कर भी वहां तक पहुंचाना, ईमेल लिखना, एसएमएस देना, अच्छी बातों के लिए अप्रिशिएट करना, और वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि उसका आंसर आए। फिर क्या हुआ हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

होना तो वही चाहिए था कि वो लड़का वहां पर चाहे अपने पैरों पर खड़ा रह जाए, पर अपनी दीदी माँ को भूले ये तो हरगिज नहीं होना चाहिए। बोलना इन अ सेंस कि अपनी लाइफ की चीजों के डिसीजन के लिए चाहे पूछे ना पूछे, पर लिए हुए डिसीजन को शेयर करना तो नहीं भूलना चाहिए ना, क्योंकि उसके लिए भी लाइफ में प्यार क्या था वो चीजें तो समझाई उसकी दीदी ने थी। जब उसे पहली बार किसी से अट्रैक्शन हुआ था तभी दीदी ने ये समझाया था कि अट्रैक्शन क्या है, उम्र का पड़ाव क्या है, प्यार क्या है, रिश्ते क्या है, और लाइफ लॉन्ग कोई रिलेशनशिप टिक जाए तब क्या होना चाहिए उसके लिए। पर हर बार ये मुमकिन हो ऐसा होता भी नहीं। आप सुन रहे हैं सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 आरजी दिलवर के साथ। कुछ किस्से, कुछ कहानियां प्यार वाली, जहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं है फिर भी एक तरफा प्यार बड़ी लंबी सी सीख दे जाता है। दोस्तों, वो लड़का वहां पर लाइफ में एक नई लड़की के साथ मिलता है, प्यार होता है, उसकी जुबानी ये कह सकते हैं उसके साथ शादी कर लेता है। 2 साल तक वो अपनी दीदी को बता नहीं सकता, या फिर बताने की चाह नहीं है, या फिर पता नहीं उसे क्या लगता है। वो बातें तो कम ही कर रहा था वहां जाने के बाद, पर वो उन्हें कुछ बता भी नहीं रहा था। और एक दिन जब उसका डिवोर्स होता है तब फूट फूट कर रोने की वजह से, अपने दिल को न संभालने की वजह से, वो अपनी वो वाली सिचुएशन की, जैसे हम बोलते हैं ना कि पढ़ाई में रिजल्ट नहीं आता और आप फेल हो जाते हो, वैसी हाल में वो पहुंच जाता है। उसका फ्लैट ओनर फिर उसकी दीदी को कॉल करता है और ये लड़की अपने माता पिता को बुढ़ापे की एज में किसी और को संभालने छोड़कर वहां पहुंच जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे भाई को जरूरत है। जाने के बाद पता चलता है उसे कि अहम चीज भी उसने भाई ने उसे नहीं बताई थी। अब क्या कह सकते हैं कि प्यार एक तरफा था या फिर प्यार में कुछ कमियां थी? जी नहीं। वो लड़की ने अपने भाई को संभाला, समझाया। भाई ने कहा मैं वापिस आ रहा हूँ, मेरी गलती हो गई। वो कहती है कि नहीं, तुमने जो किया सही किया, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही है। वहां पर छोड़ कर उसे बूस्ट कर कर एक नई कहानी की ओर बढ़ाने की अच्छी वाली सीख देकर 6 महीने के बाद वो वापिस आ जाती है। आ जाने के बाद उसके मम्मी पापा ने कहा कि हम इसीलिए कहते थे कि तुम अपनी लाइफ का सोचो, शादी कर लो, तुमने नहीं की। वो बोली कि ये मेरा डिसीजन था, उसका नहीं। प्यार मैंने किया था, मुझे निभाना था और मैं निभा रही हूँ, मैं ताउम्र निभाऊंगी। और ऐसा ही मेरा दोस्त भी है जो आप 32 साल तक मेरी राह दे चुका है, मेरी राह तक चुका है। वो आज भी मेरे साथ शादी कर सकता है, पर हम दोनों का भी यही सोचना है कि बिना शादी के अपने रिश्तों को निभाकर अपनी जवाबदारियां जो एक कमिटमेंट की उसके पीछे लगाएं। सुनेंगे ऐसी ही नई और कहानी, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

हे जगन्नाथ, हम तेरे प्यार में बावरे, तेरे सिवा कुछ हमें और याद ही नहीं, और सच कहें तो याद रखना भी नहीं चाहते। हमारी इच्छा तो यही है कि आंखों में तेरी सूरत रहे और मन में तेरी मूरत रहे और मुख पे सदा तेरा नाम रहे।

कहानियां बहुत सी होती है, और प्यार के लिए सच्चा प्यार क्या है और झूठा प्यार क्या है, असली क्या है नकली क्या है, ये लफ्ज मायने ही नहीं रखते। आप सुन रहे हैं सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 पर आरजी दिलबर को। दोस्तों, कहानियां मैं इसीलिए आपको सुना रहा हूँ जो मुझे किसी श्रोता ने भेजी है, अपने दोस्तों ने भेजी है, या फिर मैंने कहीं पर महसूस की है, यानी कि सच्ची कहानियां हैं। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक कपल, जो जोड़ी है, लड़का और लड़की, मिले थे वो अपनी जॉब के दौरान। जी हाँ, एक ही शहर में जब दो इंसान 12 घंटे जैसा वक्त अपनी ऑफिस में निकालते हैं, जब उनके जीवन में प्यार जो कहते हैं ना कि आकर्षण के रूप से शुरू होता है, ऐसा वाला पनपे, उस पर कोई हम शक नहीं कर सकते, या फिर हम उसके लिए कोई आश्चर्य भाव से नहीं देख सकते। और ऐसा ही हुआ, दोनों के दिल में प्यार की बातें, प्यार का महसूस होना ये लाजमी था, और उनसे ये हम कहेंगे कि गलती हो गई। जी हाँ, प्यार में गलती को भी बहुत ही पॉजिटिव वर्ड से लिया जाता है, और सही बात है। प्यार 4 साल तक इतने उफान पे रहा कि दोनों ने कभी भी अपनी सीमाएं लांघी नहीं, कभी भी ऑफिस का नेचर या फिर घर पे भी ऐसा कोई माहौल नहीं हुआ जहाँ पर इसके लिए दिक्कत हो। दोनों घर के लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, पर जब अपने बारे में सोचने की बात आती है, जब अपनी लाइफ को आगे ले जाने की बात आती है, तो क्या प्यार उसका मुकम्मल जहाँ शादी होती है, दो लोग साथ रहे ये इम्पोर्टेंट है, या फिर पास रहे ये इम्पोर्टेंट है? ये वाली चीज आई इस कहानी में, हम सुनेंगे और जानेंगे कि फिर क्या होता है इस अच्छी चल रही कहानी में, क्या ट्विस्ट होता है। इस छोटे से ब्रेक के बाद मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

कहानी जिसमें वो भी भारतीय कहानी हो, गुजराती की कहानी हो, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम बात कर रहे थे दो ऐसे लड़के और लड़की की जिनका प्यार सबने एक्सेप्ट किया, दोनों ने अच्छे से उतना गोल्डन पीरियड भी उसको फील किया, समझे, लगा कि अब हम दोनों कंपेनियन हैं सारी चीज़ों के लिए। 6 महीने तक वो लिव इन में कुछ सीमाएं बांध कर भी रह चुके थे, उन्हें पता था कि क्या किसकी गलती है, क्या कैसा है, दोनों ने वैसे ही एक्सेप्ट किया था। पर दोनों के सपने, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट एक मोड़ था। लड़की को इसी देश में रहकर फैमिली के साथ जुड़कर एक बड़ी फैमिली का माहौल, तीज त्योहार का वो आनंद लेना था वाली फैमिली के लिए एक सिक्योर एक लाइफ ढूंढ रहा था जो फॉरेन में पॉसिबल थी उसके दिमाग के मुताबिक, या कम से कम 5 या 10 साल तक वहां पर जाकर कमाई करने के बाद रिटर्न आने की सोच थी। फिर दोनों के बीच में ये बात शेयर हुई जो पहले हुई थी। अब दोनों के दिल में प्यार कम नहीं हुआ, पर फ्रीडम वाली बात यहाँ पर आई कि आप अपने तरीके से लाइफ में कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अब ये डिसीजन कैसे लिया जाए, दोनों ने लिया। दोनों ने कहा कि हमारा प्यार बरकरार रहेगा, पर हम साथ में लाइफ

तरीके से नहीं जी सकते। लड़का पहुंचा फौरन अपने करियर को लेकर, उसने वहां पे बूस्ट किया, 8 साल तक जॉब की। लड़की ने यहाँ पर भी अपने करियर को एक उफान की तरह बड़े से स्टेज पर ले गई। और उसके बाद जब दोनों

कृष्ण का प्यार। और इसी बात को समझाते हुए मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो प्यार का ये मायना भी सोच के देखिए कि उसके लिए, उसकी ख्वाहिश के लिए सब कुछ नहीं करना है, पर जो आपसे हो सकता है वो करें। और उसे कभी ये ना लगे कि प्यार की बेड़ियों में वो बंधा है, प्यार की खुशबू में वो सजा है, ये रखना चाहिए। ऐसी बातें आपके आसपास भी घटती होगी, आपने भी सुनी होगी, आपने देखी होगी, तो आप मुझे भेज दीजिए 9512996688 पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, ईमेल radiopalanpur@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईफोन के लिए है, आप उसे रेडियो पालनपुर लिख कर खोज कर डाउनलोड कीजिए। उसमें भी कमेंट बॉक्स है और उसमें भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। आप हमें पूरी दुनिया में सुन सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और आप रेडियो गार्डन पर जाकर नॉर्थ गुजरात के वो पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो आपको सुनाई देगा रेडियो पालनपुर, आपकी अपनी आवाज। तो दोस्तों अलविदा, अगले हफ्ते कुछ ऐसी ही रूहानी कहानियों को लेकर मैं वापिस आऊंगा। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
0: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
0: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
0: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा।

0: धीरे लिखन का प्रचलन बढ़ा।
1: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है।
0: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था, तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
0: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था।
1: जी श्रोता, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिणी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
0: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
1: और हाँ श्रोताओं, भोजपत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
0: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था, लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार।
1: जी।
0: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
1: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है।
0: जी।
1: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
0: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी।
1: जी।
0: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
1: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी।
0: जी।
1: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे।
0: जी।
1: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
0: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था

0: ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
5: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी,
5: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
5: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
5: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
5: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है।

0: यानी वर्ल्ड वाइड
1: जी।
0: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
1: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी
2: जी।
1: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है
3: जी। डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है
1: जी।
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
1: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
2: जी।
1: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
1: जी
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है
2: जी।
0: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे
1: जी। जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
3: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे।
1: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
3: अच्छा
1: जी। और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
3: डॉक्टर नमिता
0: जी,
3: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
0: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
1: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुँच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं जी। तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
0: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है
1: जी।
0: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
3: अच्छा।
0: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
3: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
1: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे।
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
3: बिल्कुल।
0: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा
1: जी।
0: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
3: बिल्कुल।
0: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
1: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा
3: जी।
1: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए लेकिन बहुत कम
3: जी।
1: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा
3: जी। इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला,

0: पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
1: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
0: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
2: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
1: बिल्कुल,
2: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात यह है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
2: जी,
1: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
0: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
1: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
2: जी
0: बिल्कुल।
2: और दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूंगा।
0: जी,
2: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई, अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
2: जी,
1: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
0: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
2: जी,
0: कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
4: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: चलो अपना अपना पार्ट निकालो
2: जी,
1: तुम्हें भी
2: जी,
1: कह रहा हूँ। चलो शाबाश, हाँ गोपाल इसको बोलो, हाँ इधर मेरी तरफ देखो, हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूँगा मेरे पीछे पीछे दोहराना, समझ गए? अच्छा शुरू करते हैं।

0: पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो। गोपाल
2: जी
1: बेटा आगे तुम पढ़ा।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी
2: कुओं
3: कुओं
2: नदियों
3: नदियों
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है।

0: मना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से,
3: गंदे पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं,
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी,
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं,
5: हाँ।
6: एक तालाब भी है।
5: अच्छा
7: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ ये भी ठीक है।
8: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। ये बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
7: मास्टर जी,
5: हाँ बोलो।
7: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक
2: जी। मास्टर
5: लिखो, फिर सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
9: दीदी बोलो मालती।
10: दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
9: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
10: हाँ दीदी, अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
9: ठीक।
10: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
9: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
10: जी।
9: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
10: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
9: हाँ।
4: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
11: नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी।
12: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते।
9: वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
13: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
9: अच्छा
13: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
9: सच?

0: फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
1: गुलाब।
0: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बता।
1: गुलाब, गेंदा, और चमेली,
0: चमेली,
1: सूरजमुखी।
0: सूरजमुखी, शाबाश।
2: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
0: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
2: जी जी।
0: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
2: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
0: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
2: बहुत अच्छे।
0: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौट कर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
2: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
2: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
2: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
2: अच्छा।
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
2: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं, और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
2: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना, तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
2: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें, और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है। तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में, और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं, और बच्चों की सक्रिय भागीदारी

पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अक्का पालनपुरी ने ओळखले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडिओ पालनपुर कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन.

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी नहीं ओला कितले ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: भेजो।
1: वाह, तो आज ही संपर्क करो रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 95 96 88 पर व्हाट्सएप करीने के बजी सोशल मीडिया ना कोई पण माध्यम मा टेक्स्ट मैसेजेस थी। मस्त रहो, व्यस्त रहो, सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

725 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी नहीं ओला किटले ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

अक्का पालनपुरी ने ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

मैं हूँ रुचि आपके साथ। वैसे आज की मेरी प्लेलिस्ट की खास बात यह है कि आज के सभी गाने पुराने तो हैं लेकिन एक नई आवाज में हैं। वो आवाज जिसने YouTube पर जादू बिखेर दिया, वो आवाज जिसके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस हैं, वो आवाज जिसे आप बखूबी जानते हैं, वो जिसने हिंदी फिल्मों के गानों को बड़ी खूबसूरती से अपने अंदाज में पेश किया और बॉलीवुड में धर तेरे की, इश्क बुलावा, फकीरा जैसे गानों से अपनी वर्सेटैलिटी भी प्रूव की। मैं बात कर रही हूँ सिंगर सनम पुरी की, जिनके बैंड का नाम भी है सनम। अब देखिए, पर्सनली मुझे इनके गाने कुछ ज़्यादा ही पसंद आते हैं। एक तो इसलिए क्योंकि सनम पुरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दूसरा इसलिए भी कि जिस तरह से ये 60s, 70s, 80s के गानों को रिक्रिएट करते हैं, जो उसकी ओरिजिनैलिटी थी, जो सोल है गाने की, उसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट। वैसे आप शायद ये जानते नहीं होंगे कि सनम पुरी, जो कि सनम बैंड के लीड सिंगर हैं, उन्हें म्यूजिक के साथ साथ एक्टिंग का भी बड़ा शौक था। उन्होंने सोचा था कि वो एक्टिंग भी करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने फ्री स्टाइल डांसिंग की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन थैंक गॉड उन्होंने म्यूजिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। वैसे जानते हैं आप, सनम पुरी के बैंड का नाम पहले सनम नहीं कुछ और था। बताऊंगी इस किस्से के बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं आज का शो उनके पहले सुपर डुपर हिट कवर सॉन्ग के साथ, लग जा गले। बड़ा ही प्यारा वर्जन है, सुनिएगा।

आज के सारे पुराने गानों का कवर वर्जन सनम बैंड के बनाए हुए ये गाने जो आप सुन रहे हैं वो सभी मेरे सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। वैसे हर बैंड के फॉर्मेशन के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। सनम बैंड की कहानी ये है कि 2003 में वेंकी जो कि बेस गिटारिस्ट है और समर जो कि लिरिसिस्ट या लीड गिटारिस्ट या कंपोजर सभी चीज़ें हैं, ये दोनों मस्कट में बैचमेट्स हुआ करते थे। दोनों को ही म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट था तो इसीलिए दोनों ने एक बैंड फॉर्म करने का सोचा, जिसके लिए समर ने अपने छोटे भाई सनम को कॉन्टैक्ट भी किया कि भाई तुम भी शामिल हो जाओ हमारे साथ में एज अ सिंगर। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं

भी जानती हूँ कि स्कूल कॉलेज में जो बैंड्स बनते हैं वो अक्सर ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि समय जो है वो सभी लोगों को अपनी अलग अलग राह में अलग अलग दिशा में भेज देता है। सनम और समर दिल्ली चले गए थे कॉलेज के लिए, इंडिया आ गए थे और दिल्ली चले गए थे, और वहीं अपने कॉलेज के रॉक सर्किट्स में बिजी हो गए। सनम पुरी को उनके सिंगिंग के लिए अवार्ड्स भी मिलने लग गए थे। वहीं वेंकी बैंगलोर में बेस प्लेयर थे, बहुत सारे बैंड्स के साथ में वो प्ले किया करते थे। फिर एक कॉलेज के इवेंट के थ्रू वेंकी की मुलाकात केशव से हुई थी। फिर भी ये सभी लोगों का उस समय एक बैंड नहीं बन पाया था, क्योंकि सभी लोग देश के अलग अलग कोने में रह रहे थे। फिर ईयर 2009 में समर और सनम मुंबई आए अपना म्यूजिक करियर बनाने के लिए। 2010 में सनम, केशव और समर ने एक नेशन वाइड पॉप बैंड हंट सुपरस्टार्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसके फाइनल राउंड में वेंकी ने उन्हें ज्वाइन किया। इस हंट में सनमपुरी के बैंड ने द SQS प्रोजेक्ट के नाम से एंट्री ली थी, और जहां 1600 से भी ज़्यादा इंडियन बैंड्स ने पार्टिसिपेट किया था, वहां द SQS प्रोजेक्ट को विजेता घोषित किया गया, गिविंग द बैंड अ नेम ऑफ SQS सुपरस्टार्स। और कुछ ऐसे उनकी जर्नी शुरू हुई। वैसे उन्होंने अपने बैंड का नाम SQS क्यों रखा था, और फिर सनम नाम कैसे मिला, बताऊंगी कुछ ही देर के बाद। उसके पहले सुनते हैं इसी बैंड का बनाया हुआ एक और ब्यूटीफुल गाना, वर्जन ऑफ है अपना दिल। तो आवा

हूँ रुचि आपके साथ, और आज आप द सनम बैंड के सभी गाने, इनके कवर वर्जन ऑफ सम ऑफ आवर फेवरेट रेट्रो सॉन्ग्स जो सुन रहे हैं। वैसे मैं बात कर रही थी कि कैसे इनके बैंड का नाम पहले द SQS प्रोजेक्ट था, वो इसलिए क्योंकि उस समय उनके बैंड में एक और एक मेंबर हुआ करते थे क्यूएश नाम से, तो इसलिए समर, क्यूएश और सनम इनके नाम पर ये SQS बना था। लेकिन म्यूजिक हंट के फाइनल्स में जब वेंकी ने उन्हें ज्वाइन किया तब इस नाम का कोई महत्व ही नहीं बचा था क्योंकि अब और भी ज़्यादा बैंड मेंबर्स हो गए थे। फिर भी उन्हें इस नाम के साथ 3 साल तक काम करना पड़ा था क्योंकि एक म्यूजिक कंपनी के साथ उनका 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। लेकिन फिर जब 3 साल पूरे हुए और उनकी मुलाकात उनके बिजनेस मैनेजर बेन थॉमस से हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई अब एक नई शुरुआत करते हैं। वैसे नया नाम रखना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि लोगों का ये फीडबैक था कि जब भी कुछ वीडियोस या फिर इनके गानों के लिंक्स लोगों को ये फॉरवर्ड करते थे, मैसेज करते थे, तब लिंक पे क्लिक करने से पहले लोगों को ऐसा लगता था कि SQS प्रोजेक्ट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है और इसलिए वो लोग उस लिंक पे क्लिक ही नहीं करते थे। मतलब SQS प्रोजेक्ट डिड नॉट रियली फील लाइक अ बैंड्स नेम। तो फिर सनम और उनकी टीम ने बैंड का नाम चेंज करने की ठानी। काफ़ी डिस्कशन और कुछ 200-300 नाम सोचने के बाद, उनके नेम्स का कॉम्बिनेशन सोचने के बाद और फिर कोई भी नाम ना जमने के बाद, एक दिन एक शो के पहले ये लोग ग्रीन रूम में बैठे थे और कहीं पर उन्होंने सनम इलेक्ट्रिक लिखा हुआ देखा। और बस क्या था, वो देखते ही इनके दिमाग में आया कि हमारा लीड सिंगर भी सनम है। सनम एक ऐसा नाम है जो कि यूजुअली हिंदी गानों में यूज़ किया जाता है, तो क्यों ना बैंड का नाम भी सनम ही रखा जाए। और कुछ ऐसे सनमपुरी के बैंड का नाम सनम ही बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं सनमपुरी को म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए एनकरेज किसने किया था? बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना। सनमपुरी की आवाज़ में है, सनम बैंड का ये रिक्रिएटेड वर्जन है। आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ दिस वर्जन ऑफ द सॉन्ग क्योंकि इतने सिंपलिसिटी से इस गाने को इन लोगों ने परफॉर्म किया है कि मैं क्या बताऊँ। चलिए सुनाते हैं आपको यही गाना। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

आज हम सनम बैंड के सभी वो गाने आपको सुना रहे हैं जो कि उन्होंने 70s 80s के मेरे आपके फेवरेट गानों के रिक्रिएशन बनाए हैं, यानी कि कवर वर्जन्स बनाए हैं। और ये सभी खूबसूरत गाने आप मेरे सारे गामा कारवां से सुन रहे हैं। वैसे सनम पुरी को बचपन से ही म्यूज़िक में इंटरेस्ट तो था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से प्रोफेशनली म्यूज़िक सीखा नहीं था। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने गाने गाना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट गिटार, कीबोर्ड और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने खुद ही प्ले करना सीख लिया था। लेकिन फिर भी अपने स्कूलिंग के बाद सनम दिल्ली में रहे थे 7 सालों तक, और उसके बाद जब वो मुंबई आए तब जाकर उन्होंने म्यूज़िक को सीरियसली लेना शुरू किया। पर एक प्रॉब्लम थी सनम पुरी के साथ, जिसके बारे में वो खुद बताते हैं कि पहले ना वो सिर्फ गाने गाते थे लेकिन उन गानों को महसूस नहीं कर पाते थे, गानों के साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट ही वॉजन्ट टू कम्फर्टेबल विद म्यूज़िक, क्योंकि वो बड़े शाय किस्म के थे और उन्हें ये आइडिया भी नहीं जमता था कि वो किसी और के कंपोज किए हुए गाने गाएं। सनम चाहते थे कि वो खुद ही गाने लिखें, कंपोज करें और गाएं, तब जाकर के शायद वो गाने को फील कर पाएंगे। इसीलिए उनका प्लान प्लेबैक सिंगिंग करने का था नहीं, वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक ही बनाना चाहते थे और अपने बैंड के साथ मिलकर के, इसलिए उन्होंने खुद ही इन गानों के ऊपर वीडियोज़ बनाने का भी तय किया। लेकिन किस्मत ने कुछ और सोच के रखा था और उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो ही गई। उनके गाने जैसे धत्तेरी की और इश्क बुलावा बड़े हिट बन गए। कैसे मिला था सनम को इन सॉन्ग्स को गाने का मौका, ये अपॉर्चुनिटी इनके हाथ आखिर आई कैसे, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सनम पुरी का अगला गाना सुनाते हैं आपको, 90s का सबसे रोमांटिक।

मैं हूँ रुचि आपके साथ। जानते हैं सनम पुरी के जो मैनेजर हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर के भी मैनेजर रह चुके हैं और उन्होंने ही सनम की मुलाकात विशाल शेखर से करवाई और कुछ ऐसे विशाल शेखर ने सनम को अप्रोच किया कि वो आए और आकर के धत तेरे की गाने को गाएं। लेकिन ये गाना जो था वो काफ़ी आसान था, इसलिए सनम ने हाँ भी कह दिया और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी किया। जब ये गाना इतना अच्छा चल गया, हिट हो गया, तो विशाल शेखर ने सोचा कि इश्क बुलावा जो सॉन्ग है उसके लिए भी सनम को बुलाया जाए। इनिशियली सनम को लगा कि ये गाना भी धत तेरी की सॉन्ग की तरह ही होगा, यानी कि बस कुछ ही देर में निपट जाएगा, आसानी से हो जाएगा, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये गाना काफ़ी डिफ़िकल्ट निकला, लेकिन सनम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस गाने को रिकॉर्ड किया। और जब ये गाना रिलीज़ हुआ तब तो मानो कि पूरी की पूरी किस्मत ही पलट गई सनम पुरी की। ये गाना काफ़ी पॉपुलर हो गया और इसी गाने से सनम पुरी ने हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली और सभी लोगों ने सनम को और सर्च करना शुरू किया। एंड दैट इज़ हाउ जो ये इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते थे उनके भी व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए और फैन फॉलोइंग जो थी वो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ने लग गई। तो कुछ ऐसे ही गाने जिनके कि हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, 60s, 70s, 80s के सुपरहिट सॉन्ग्स जिनका कवर वर्जन बनाया है सनम द बैंड ने, वही यहाँ पर अभी आपको सुना रही हूँ। सुनिए ये अगला।

0: कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90